0: हंगार
1: अंगार दो मेंदुर कोरी एकार गड़ फन रहे रिपीट एरे दिया गड़ तेरी हूँ आदि बुद्ध दो होकेरे मेंदमो बार गड़ तेरी हूँ
0: हंगार
2: हम एकनि दिवे राज्य चढ़ूं
3: ए वेले नाला एरी हूँ ताहम मदे नुकुरा ए उन्दा को तस्सब वर्वस नुकुरे वे एकमको ekuluna elobi etasbata ei husasam mihi furi pandu mani
2: mihi tuge loi peti
4: komme budadu he gemenduri kuri egar gadi fanare repeat hama ere diha gadi tiri ho
5: engha satriste ka salis 9 kilohertz medium wave adi 89 megahertz fm band
2: दिवे ही राज्य के आड़ो
5: इंतजार करूँगा
2: मिहितु के लोई पेटी
6: मुदर रिसे के आड़ों
7: ती मूसा के फानो मिस्रंग एम्परी वड़ा गतो मूसा के फानो मिस्रंग एम्परी वड़ा
6: दरिवारुंगे सवाल तक आए को
8: फुरतमा एरी बोटका नेंग ऐसोले हो एकले के फानो
6: इब्रतुम फुरिगेम वा वाह कतक आए को
9: ಎಮ್ಮೆ ಸೀದಾವೆಗೆಂಬ ತೆದುಮಗುಗ ಸಾಬೀತುವೆ ಹುರುಮ
10: ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಅಗೀದ ವರುಗದ ಕುರುಮ
9: ದೆದುನಿಯೇಗೆ ಹಳಯಾಯ್ ಬಾಚವೆರಿ ಕುರುಮ
10: ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಕಂಕಮಾ ಗುಳೇಗುತುಂ ದೀನಿಯ ಇಲ್ಮ್ವೆರಿನ್ನ ಸುವಾಲ್ ಕುರವ್ವ

0: खबर कड़ी।
1: अस्सलाम वालेकुम, मेरे खबरगढ़ प्रोग्राम है कौमी बदल को अरगुनाशत नसीम। मेरे खबरगढ़ प्रोग्राम का फाहम को ले मुहिम खबर तो सुरी तो तेरे का कौम में फुल को इस मसक के कुरबानी रई तो मालियोस वे नूदी हम जो कायम कुरम कमा दाखनी सलामता मसक के तेरे कमा फनियता बे वजीर बितारव अदु के सरकार वेरी कमा हवाले पाऊं अथोर तो गमी हुंदरी उले तेरे सारशेका पोहिया वे कम गमस रोहिं कुमा कॉन्ट्रैक्टर ना हवाल को फावा कमा इमारा कुर्मा गदरोर कमा विनारा पे मुसारा बितारवं कुरियंग मस्तवगा एलनीनो के पार वर पोटा गदवाने गदवे के दान कमशा एलनीनो के नुरका एम में पोडवानी नोएंबर मोह कमा मुस्मा वह कौमी दारा बितारवं यहूदीन के उद्वान का लुपनान के अंगा स्टोस्ते कमी हुन शाहीद को लापावा कमगा एगोम के सेहता बे मुसारा हाम कुरे खबर हिमने

0: हंगार
1: अंगार दो मेंदुल कोरी एकार गड़फन रहे रिपीट एरे दिया गड़ती रही हूं आदि बुद्ध दो हो केरे मेंदमो बार गड़ती रही हूं
0: हंगार
2: हम एकने दिवे राज्य चाड़ू
3: अंगादी उंगन्नादी मुनिफोई फिलवा दिनु मुगा
4: थेदु वेरु कमायको
3: एकु वेरु कमायको
4: एरु वेस मिहारु वेस रायतुन्नायको रायतुन्ना एम मेगातुगा दिवेहराच्चे के अडु
3: एंहा सतरस्ते कसालिस नुए किलोहर्ट्स मीडियम वेव अड्डी हनुए मेगाहर्ट्स एफएम बैंड